मन सोया मन सोया माया बिस्मार मन सोया माया बिस्मार इस ग्रह में कोई जागत रहे इस ग्रह में एक घर की गल की इस ग्रह में कोई जागत रहे कोई जागता होया नजर आंदा भाई ना महाराज जागदा कोई नहीं सारे सौंगे ते जे साडियां अखां संसार नूं तक तक के नहीं अजे तक

जिनू पढ़िया ओही अखां विच, जिनू सुनिया ओही अखां विच, जिहदी आराधना कीती ओही कन्नां विच, जिसदी आराधना कीती ओही विचारां विच मन विच, जिहदी आराधना कीती ओही सुपने दे विच, अख खोली ते जागृत रूप दे विच वी ओही नजर आया।

0: गुर अमरदास जालप पने तू एक लोड़े एक मने ओ तू एक लोड़े एक मने ओ
1: जिन्हां ने एक नूं लोड़िया एक नूं मन्निया उन्हां दी बात है जालप पट कह रहे तू एक नूं मन्निया ते एक नूं लोड़िया महाराज तां तुहाडी ए अवस्था वेखी डोले ही नहीं इस करके भाई बुढ़ापा नेड़े नहीं आउंदा अंदरली सुत सावधान होवे ना सानू बुढ़ापा पता कदों आउंदा जदों असीं फिजिकल तां जवान ही रहिए मन करके कमजोर हो जाइए सुरत करके कमजोर हो धोखा खा जाइए सुरत उखड़ जावे तां बुढ़ापा आ गया समझो बुढ़ापा नेड़े ते ऐसे गुरु अमरदास महाराज जदों गुरु अंगद देव महाराज दे नाल गोइंदवाल साहब जी दी जूह विच तुरे जांदे ने इह कह के आपां समाप्ति करांगे तुरे जा रहे हैं इस पासे गुरु अमरदास महाराज इस पासे गुरु अंगद देव महाराज तुरे जा रहे हैं सेवक रूप दे विच बाबा गुरु अमरदास महाराज नाल पातशाह पूरे गुरु अंगद देव महाराज हैं चलदे हैं गुरु अमरदास महाराज जी की यह बाह गुरु अंगद देव महाराज तो अगे हो गई देखियो गुरु का अदब चलदे हैं गुरु अंगद देव महाराज तो पातशाह तो गुरु अमरदास महाराज जी की बांह चलदे हैं अगां हो गई जदो अगां बांह होई ते गुरु अमरदास महाराज ने अंदर ही अंदर फुरना कीता तू गुरु की बेअदबी कीती है ना रह तू एहो जे जा तू गुरु की बेअदबी होर बेअदबी कीती है तू ते अंग नाल लगन वाली नी सारी उम्र तेरे नकारा कर देना तू मेरे गुरु की बेअदबी कीती गुरु अंगद देव महाराज पातशाह नू क्योंकि वेव सहन ते एनर्जी वेव सहन एक दूजे वल चलदियां आउंदियां रहिंदियां ने जे असीं इक्को जी पावर वाले होइए ना जां एक बर्तन खाली होवे उस वल एनर्जी जिहड़ी है फ्लो होनी शुरू हो जांदी गुरु अमरदास महाराज का बर्तन खाली है रिदा खाली है एनर्जी जांदी है भरपूर होगी वापस आ जांदी है क्यों वेव्स जिहड़ियां चलदियां ने गुरु ज्योति विच कदी इधर गुरु अंगद देव महाराज वल जदों कोई वेव्स आईयां गुरु अंगद देव महाराज कहंदे सुन पुरखा ये क्या तै कीना गुरु अंगद देव महाराज कहंदे अमरदास बाबा की कीता सुन पुरखा ये क्या तै कीना जरा शक्त भी जरी ना जाए कह लगे तेरे अंदर शक्ति आ गई तू सेवा तो की साड़ी शक्ति आ गई ते तेरे तो बर्दाश्त नहीं हुई जे बां अगे लंघ गई इनू सराफ दे दिता सुक जा कम नहीं लेना तेरे तो शक्ति जरी नहीं गई बर्दाश्त नहीं हुई ते गुरु अमरदास महाराज ने चरण पकड़ ले पातशाह आप जी की बेअदबी किवें बर्दाश्त कर सकनी गुरु हो मेरे जीवन दे दाता हो आप जी की बेअदबी किवें बर्दाश्त हो सकती महाराज ए तां हुण नकारी गई मैं इस तो कम नहीं लैना ते जीवन दे विच आउंदा इतिहास विच गुरु अमरदास महाराज ने बाकी का जन्म बां दे कोलो कम नहीं लिया जे डिगे भी ना गागर चुकियां डिगे भी ए बां ओवें दी ओवें है आ बां जिहड़ी है उत्ते घड़े दे उपर गागर दे उपर आप जी हथ वेखो कि दोवे हथ नाल गुरु अमरदास महाराज ने नहीं फड़ी गागर इको हथ नाल बां पकड़ी हुई दूजी बां इस तरह लगी नाल फोटो बनाने वाले ने कमाल कर बां तो कम नहीं लिया तगरी बनवाज गुरु अंगद देव महाराज कहंदे ना यह तां शरीर परमात्मा दा दिता होया ऐसा ना करो आप गुरु रूप विच आ गए हो आप जी ने सर्व संसार की सेवा करनी है ते गुरु अमरदास महाराज कहंदे पातशाह मैं ते केवल दस रहा अपनी सिख संगत नूं कि शब्द दा ते गुरु दा किवें अदब करना है ते आउण वाले समय विच असी भी बेअदबी ना कर दईए ऐसे हन साडे पातशाह साडे सतगुरु पूजन योग हन किन्नी वारी पूजांगे करोड़ा जन्म लैके भी नहीं पूज सकते इस करके भाई गुरमुख प्यारे हो आओ ऐसे पातशाह जी की सिफत जुड़िए जिहड़े कह रहे हैं सौ ना जाइए किते ਗਫਲਾਤ ਦੀ ਨੀਂਦਰੇ ਸੌ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਕਿਤੇ ਮਨਮੁਖ ਨਾ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਮਨਮੁਖ ਸੁੱਤਾ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਮਾਇਆ ਤੇ ਮੋਹ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿਚ ਨਾ ਸੌ ਜਾਈਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਗੇ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਗਦੇ ਰਹੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਦੇ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਗਲੇ ਨਾ ਲਾ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿਚ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਨਿਸਤਾਰਾ, ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਉਥੇ ਦਾ ਨਿਸਤਾਰਾ ਹੋਣਾ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਰਸਤੇ ਚ ਰਹਿ ਜਾਣੀ। ਰਸਤਾ ਬੜਾ ਲੰਮਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜ਼ਕਾਤ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੁਣ ਚੰਗਾ ਦਿੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਆਏਗਾ ਨਾ ਭਰੋਗੇ, ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਚ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਮ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਿਬੜ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਜ਼ਕਾਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਣੇ, ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਉਧਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ? ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਾਲ ਕਰਕੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਫੁਰਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਵੀ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਸੁਰਖ ਜੋੜ ਕੇ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿਮਰਨ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ।

वो पदे रूप है और राग गौड़ी नाल एक होर राग मिलता है गुवारेरी क्योंकि इकले गौड़ी राग दियां 12 प्रकार ने गुरु ग्रंथ साहिब विच गौड़ी पी सोरच भी गौड़ी पूर्वी गौड़ी बैरागन गौड़ी दखनी आदिक 12 प्रकार की गौड़ी हजूर ने उच्चारण की है। यह गौड़ी गुवारेरी है। यह भगतां महापुरखां दे शब्द तां चुने सन क्योंकि धन गुरु ग्रंथ साहिब जी की अमृत बाणी हर किस्म की दीवार नूं तोड़ के पूरी मानवता नूं एक थां ते बिठा दिंदी है। इत्थे जात करके धन करके खिते करके सियाणप अकल करके ओह कोई वितकरा नहीं। इत्थे सिर्फ सारिआं दे अंदर परिपूर्ण परमात्मा नूं सर्व व्यापक जान के एक पिता एक के कंबारक तू मेरा गुरखाही जा सबे सांधी सांझी वार सदाएं जा ए बचन के एक नूर ते सब जग उपजिया कौन भले को मंदे। भगत रविदास साहब जी की रचना असी विचारनी प्रारंभ कीती ते भगत साहब की सारी बाणी बेनतियां विच प्रेमा भगती विच निम्रता विच पिजा होया अंदर। पर एक गल भगत साहब ने कही कहिंदे ने इस दुनिया विच बहुत वड्डे राजे हो चुके ने जिन्हां दे सिर उपर सोने दे छत्र झुलदे सन। अज भी उन्हां अज राजे मिलणगे जिन्हां कोल धन पदार्थ पदवियां बहुत ने बहुत विद्वान हो चुके ने ते अज भी इस धरती ते बेअंत सियाणे लोक ने विद्वता दे भरपूर भांडे ने। ते तीसरी गल कही के ताकत बाहु बल वाले सूरमे भी बड़े ने पर किन्ने एक गल चेते रखियो जितना मर्जी कोई विद्वान पंडित होवे जितना मर्जी कोई चक्रवर्ती सम्राट होवे ते जिन्ना मर्जी बाहु बल वाला सूरमा होवे परमात्मा दी भगती करन वाले भगत दे बराबर कोई भी नहीं आ सकता। भगत साहिब दा वचन है पंडित सूर छत्रपत राजा भगत बराबर और ना कोई भगत रविदास। कहिंदे ने विद्वता पंडताई होनी होर गल है राज भाग आ जाना होर बात है बाहां विच ताकत आ जानी ए भी एक वक्री रब दी दात ही है। पर भगत दे बराबर सिमरन करन वाले दे बराबर कोई नहीं। अज भगत साहिब ने जिहड़ा शब्द बख्शिश कीता सिर्फ असी पहलियां दो तुकां ही विचारांगे। देखो इहदे विच भगत जी कहिंदे ने मालक दे चरणां च अरदास करदे ने मेरी संगत पोच सोच दिन राती हे प्रभु एक सोच एक चिंता दिन रात मेरे अंदर टिकी है। देखो इस चिंता नूं रब तो विछुनिया होया दी चिंता ना मनना। वो चिंता जिहड़ी है किसे अंदरे पैदा हो जाए चिंता धन दी भी है चिंता पदार्थां दी भी है चिंता परिवार दी भी है ते चिंता के भी हुंदी है कि रब नूं ना मिले ते सारी जिंदगी लंघ गई की खटिया ओनू भी चिंता कहा गया। ते सतगुरु ने बाणी विच कहा अंत काल जो नारायण सिमरै ऐसी चिंता मैं जे मरै। चिंता शब्द वरतिया कहिंदे एक सोच एक चिंता खाई जा रही है कि मेरी उठक बैठक है माड़े लोकां नाल चंगे नहीं। पोच शब्द वरतिया है अगे असी इहदे गहराई चरत वाचांगे पोच कित्थों बनिया। मेरी संगत पोच सोच दिन राती यही चिंता है। कहन लगे मेरा कर्म कुटिलता कुटिल दा अर्थ हुंदा टेढ़ा जिहड़ा अंदर दा भेद किसे नूं ना दे अंदर दा कपटी। कहिंदे ने मेरे जिन्ने भी कर्म ने ना वो कपट भरे ने वो टेढ़े ने कुटिलता वाले ने जन्म कुभांति ते जिस घर विच मेरा जन्म होया है मेरे मालका ओनू लोक उंज भी सन्मान नहीं देंदे। ये सोच खारी है। पर एक मैं तेरे दर ते मंगण आया कि राम गुसाइया मेरे सोहने प्रभु मेरे गुसाई जी के जीवना जिंदगी देन वाले जीवन देन वाले मालक जी मोए ना बिसारो मैं जन तेरा खै मैं कपट नाल भरिया खै मैं माड़े बंदी

संगत गुण प्रगास। जिन हर हर हर रस नाम न पाया ते पागहीन जम पास। जो सतगुर शरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन तुर मस्तक लिख्या लिखास। धन धन सतसंगत जित हर रस पाया मिल जन नानक नाम प्रगास। राग गूजरी महला पंजवा काहि रे मन चित वह उदम जा आहर हर जियो परया। सैल पत्थर मह जंतो पाए ताका रिजक आगै कर तरिया। मेरे माधो जी सतसंगत मिले सो तरिया। गुर प्रसाद परम पद पाया सूके काष्ट हरिया रहाऊ। जनन पिता लोक सुख बनता कोई न किस की धरिया। सिर सिर रिजक संभाहे ठाकुर काहि मन पाओ करिया। ऊडे ऊड़िया वैसै कोसा किस पाछै बजरे शरिया। किन कवन खलावै कवन चुगावै मन महे सिमरन करिया। सब निदान दस अष्ट सदान ठाकुर करतल तरिया। जन नानक बल बल सद बल जाइए।

हरि आपे ठाकुर हरि आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी हर एको पुरख समाना एक दाते एक पेकारी जी यू सब तेरे चोज बिडाणा तू आपे दाता आपे भुगता जी हौ तुध बिन अवर न जाना तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख बखाना जो सेव है जो सेव है तुध जी जन नानक तिन कुरबाना हर क्या वह हर क्या वह तुध जी से जान जुग मह सुखवासी से मुकत भये जिन हर त्याया जी तन तूती जम की वासी जैन निरपाओ जिन हर निरपाओ त्याया जी तन का पाओ सब गवासी जिन सेव्या मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से तन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी परे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुध जी हर अनेक अनेक अनंता तेरी अनेक करें हर पूजा जी तप तप है जपें बेअंता तेरे अनेक पढ़ें बहु सिमरत शास्त्र जी कर क्रिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो पाग है मेरे हर भगवंता तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुध जी बुढ़ अवर न कोई तू जुग जुग एको सदा

जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला तित सरवर डै पहिले निवासा। पाणी पावक तिन्हें किया पंकज मोह पग नहीं चाले। हम देखा चढ़ डूबी अले।

कर पहन अनुमानत महामूढ़ कछु भेद न जानत महादेव को कहत सदा सेव निरंकार का चीनत मह भेव आप अपनी बुध है जिति वर्णत पिन पिन तो तुमरा लखा न जाय पसारा कि विध सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंग भयो राव कहीं भूपा अंडज जेरज से तज किम

मन एक कहे मत एक न माने ओ। सिमरत शास्त्र वेद सब है बहु भेद कहे हम एक न जाने ओ। सरी असपान कृपा तुमरी कारु मैं न कहे सब तोहे बखाने।

0: आओ सब तो पहला गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का बख्शिया फतेह का जयकारा बुलंद करो ते आखो सारे गज बज के वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। गुरु खालसा जी सिख इतिहास के खूनी पत्रियां विचों एक दलेर सिंह की शहादत का प्रसंग आप दी सेवा विच पेश कर रहे हैं। उस समा जदों गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज 40 सिंह समेत चमकौर की कच्ची गढ़ी दे विच विराजमान ने दुश्मन की 10 लाख फौज ने गढ़ी नूं घेरा पा लिया। गुरु पातशाह ने इस जंग दे विच अपने ओ वाक पूरे करके विखाए ने जो कदे 1699 की विसाखी वाले दिन कहे सन। सवा लाख से एक लड़ाऊं तबे गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। कले कले सिंह ने सवा लाख फौज का टाकरा किया चमकौर की जंग विच। गुरु महाराज के वड्डे दोवें साहिबजादे साहिबजादा अजीत सिंह साहिबजादा जुझार सिंह जी अनेक सिंह सूरमे लखां वैरियां दे कान दे कान लाउंदे होए चमकौर की जंग विच शहीदी पा जांदे ने। अर्दल विच बस 5 कु सिंह रह गए, बाकी 94 सिपा सलाह टोरे पै गई सिंहा नू सोच जा पातशाह ने वारी वारी अजीत जुझार टोरे कोले आ हजूर दे किर लगे दाता वक्त विचारना चाहिदा ए सूर वीर जी और नीति वाण बन के और की घड़ी नू टालना चाहिदा ए। असि मरांगे लड़दियां अंत तीकर ए पर पातशाह तुसी तैयार हो जाओ इथो निकल जाओ नीले ते लट दे के मो लगदियां जंगलों पार हो जाओ। गुरां कहा गंभीरता नाल सिंगो कि मैं पिठ लुका के नठ जावा अंत तीक जिन्ना मेरा साथ दिता है कि मैं सिंह मरवा के नठ जावा। जेकर आस मैथो यही रख दे हो
1: बहुत अच्छे दे
0: जेकर आस मैथो यही रख दे हो तुसी सच जानो कुछ भी जान दे नहीं जेड़ा वक्त पहचान दे हो भावे कलगी धर नू तुसी पहचान दे नहीं। सिंह नाल जकलम दे बोल उठे हुण कोई सुनन सुनाउण दी आग्या नहीं। गोबिंद सिंह पंत तेनू हुक्म देंदा इत्थे घड़ी लंघाउण दी आग्या नहीं। मन्निया गुरु ने गुरु दा हुक्मनामा
1: जी भाई
0: चेती सीस चुका के उस तुरिया हाथ जोड़ दिते अखां भर आईयां अते हुक्म वजा के उस तुरिया। गुरु खालसा जी अज तक दुनिया विच गुरु भी बड़े होए ने चेले भी बहुत होए ने ते कई चेले अपनी आत्मक अवस्था उच्ची करके गुरु भी बने होंगे पर किसे भी कौम दे इतिहास विच ए मिसाल नहीं मिलदी के कोई गुरु आप चेला बनया होवे। पर सिख कौम दा इतिहास दसदा है वह परत्यो मर्द अगमड़ा वरियाम अकेला वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुरु चेला। गुरु पंथ दा हुक्म मन के कलगीधर पातशाह भाई संगत सिंह जी दे सीस ते कलगी सजा के जदों चमकौर दी गढ़ी विचों ताड़ी मार के निकल रहे ने तां रात दा समय आकाश विच बिजली चमक रही है। जांदियां जांदियां पैर नूं ठोकर वजी पिछा मुड़ के भाई दया सिंह जी नूं कहण लगे ने गुरु महाराज दया सिंह जी देखो जरा पैर नाल कुछ अड़िया। भाई दया सिंह जी ने चुक के देखे तां नजर ते आया साहिबजादा अजीत सिंह जी दी लाश पई है। बेनती की महाराज जे आप दा हुक्म होवे तां मैं अपनी पग पाड़ के इस उत्ते कफन पा देवां। दो गज कफन मैं इस ते पा देवां। अंतम समय ए बंदे दा कज हुंदा गोबिंद सिंह क्या अदा तर दया सिंगा ए तां सूरमे दी अणख ते वज हुंदा। ताड़ी मार मैं गड़ी चो निकलना है ताकि वैरी ना मैनू कमजोर समझे लोकी कहना के गुरु गोबिंद सिंह ने पुत होर समझे ते सिख होर समझे। अपने सिखा सेवका नू इन्ना प्यार करन वाले मेरे कलगीधर पातशाह चमकौर दी गड़ी छड के चाले पा देंदे ने। पिछे जो गिनती दे सिंह बचदे ने ओ वी दुश्मन फौज दे आउ लंबे होए शहादत दा जाम पी जांदे ने। खून ना लख पथ होई चमकौर दी गड़ी बारे कवि दा ख्याल इस तरह है।

बहादुर शर्म कौर का ताना सुन के मुगल सिपाही सिंगड़ी से बिजली वांग टुट के पै गए। इस लड़ाई में एक पठान ने बहादुर शर्म कौर के पिछले पासों की जा बरछी मारी तो कलगी धर की बीस पुत्री गेड़ा खा के उस शिखा में जा डिगी जिस अपने शहीद हुए वीर का संस्कार कर रही थी। इस दृश्य में भाई साहब भाई वीर सिंह जी ने इस तरह कलमबद्ध किया है।

0: गुररूपी साध संगत जी, आप सब जानते हो कि सिख इतिहास बहुत विशाल है। साथों लिखदियां गाउंदियां तो अनेक भुलां हो गई होणगियां। आप जी बख्शनहार हो, आओ फतेह दा जवाब फतेह दिओ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।
1: केलबू दी रंगीली धरती दे वसनीक स्रोतियो, तुसी ये प्रोग्राम FM रेडियो CISK 94.3 तो सुन रहे हो। ए प्रोग्राम गुरुद्वारा साहिब वैष्णव सिंह सभा विलियम्स लेक तो प्रसारित किया जा रहा है। उम्मीद रखते हाँ कि इस प्रोग्राम नूं होर भी खोज भरपूर बनाउण लई तुसी सानूं सुझाव दिंदे रहोगे। साडे स्टूडियो दे टेलीफोन नंबर तां आप जी नूं पता ही है, जे नहीं तां ओह भी लिख लो जी। एरिया कोड 250-392-3074 अते फैक्स नंबर एरिया कोड 250-392-3075।
2: साडा ईमेल एड्रेस नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com। एक बार फिर नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com।
3: You are listening Sikh Radio broadcasting from Gurdwara Sahib Western Singh Sabha and Williams Lake. Any comments and suggestions, please call 250-392-3874.

परम सत्कार योग सतगुरां दी साजी अते नवाजी होई गुरु प्यारी गुरु सवारी गुरु खालसा साध संग जी दूरों नेड़ों चल के सतगुरां दी पावन पित्र बारगाह विच जुड़ बैठे हां। सब तो पहला रसना की पवित्रता और मन की पूर्ण एकाग्रता वास्ते साहिबे कमाल सतगुरु धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज की बख्शिश दोहराओ, प्यार नाल फतेह बुलाओ, कोई रसना वांझी ना रवे। एक बारी सारे आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बेशुमार इकट्ठ है संगत दा, हजारा नहीं लखां दी तादाद विच इत्थे कोई वहीकल नहीं गिन सकदा। संगत दी गिनती ते करनी बहुत दूर है, जिन्नी संगत पंडाल विच है उन्नी ही बाहर फिरदी है। जिहड़े अगे अगे बह गए ठीक है, कई कहिंदे पिछे बहण दा ते आनंद ही नहीं आउंदा, गलती अगे नहीं जगह मिली ते बस। पर जिन्हां दे अंदर प्यार है वो जिथे जगह मिलती है बैठ जाते हैं। उन्होंने अगे जा पिछे बैठन तक नहीं, उन्होंने पता गुरु नानक सानू पिछे बैठिया नहीं वेखता, सानू हर थां ते वेखता। सो हुण एक मेरी बेनती है प्रबंधकां दे चरणां विच, मैं सड़क तो आउंदे ने वेखिया है आ रही संगतां नूं मैं तकिया है, जे नमस्कार इस तरह ही संगतां करदियां रहियां ते आपां नूं इत्थे ही दो बज जाणगे, मत्थे ही टेकेगी संगत। प्रबंधकां नूं बेनती है जिहड़ा राह बणिया है रस्ते विच ही संगत नूं बिठा दिओ, बीबियां नूं बीबियां वाले पासे, भाइयां नूं भाइयां वाले पासे, अगे तक कोई मत्था टेकन ना आवे। जिन्हां ने नमस्कार कर ली बस ठीक है, संगत नूं बिठाउण दी कृपालता करो। इस तरह से नमस्कार करदे बहुत समा लग जाणा, आओ उन्ने चिर च संगत बह जाएगी। आपां धारना पढ़ते हैं सारे गज वज के बोलिया करो किन्ने हिस्सों विच, जिन्हां नूं महाराज ने जीवा दित्ती है उन्हां सारिआं ने गज वज के बोलना है। वारी वारी सिर रसना पवित्र करनी है, पहले ही सिच दास, फिर सब भाई, फिर सब बीबिया, तिने हिस्सों में गज के बोलिया करो। आओ उन्हां चर संगत बैठेगी, आपां धारना पढ़िए, एकाग्रता बना के मार दे चरणां च बैठना है। आपां ला लैण आए हैं तो कुछ ना कुछ खट के लैके जाना है।

बैठन की कृपालता करो भाई, किसी ने खड़े नहीं होना, जिथे जिथे जगह मिलती है बह जाओ। सारी संगत सियाणी है, सारी संगत सूझवान है, एकाग्रता बनाओ, रौले तो संकोच करो। आपां लाहा लैण आए हैं, अपने समय नूं कीमती बनाउण आए हैं, समय नूं लंघाउण जां समय नूं पास करन वास्ते नहीं आए। इस करके आप जी दे चरणां विच बेनती है, एकाग्रता बनानी है, जड़ मन जोड़ के सतगुरां दे चरणां च बैठना, जे बोलना ते धारना च बोलो, सारे पढ़िया करो।

चाण चक दुरमत देख दयाल होए सतगुर सबना दा भला मनाएगा गरीबा बुरे दा भला कर गुस्सा मन न हड़ा देही रोग न लगे पल्ले छिपा बुरे दा भला कर महापुरख अचान चक गणका वाले जाए खलता दुरमत देख दयाल होए हथो उसनु दितो सतोता लिव लगी तिस तोत्यों लिव लगी तिस तोत्यों नित पढ़ाए करे असोता गुरमुख जाग रहे दिन राती नित पढ़ाए करे असोता एक खड़े करे तेरी चाकरी नित पढ़ाए करे असोता कहे नानक सो सत पाए जिसनु अन दिन हार ले लागे जागत रहन निहाई जागत रहन निहाई नित पढ़ाए करे असोता नित पढ़ाए वाह।

0: बैकुंठ भवान चारण नरके विच ना खाद सगोता नाम नारायण छोट अछोटा नाम नारायण छोट अछोटा जय सिमर जान को सिमर आजा मल उदरियो गन का हूँ गत पाई
1: सतगुर की बाणी सत सत कर जानो गुर सिखो
0: हर करता आप मोह कढ़ाए सतगुर की बाणी हर को नाम सदा सुखदाई
1: जान को सिमर आजा मल उदरियो
0: गन का हूँ गत पाई।

हर को नाम सदा सुखदारी, जा को सिमर अजामल उदरियो, गन कहूं गत पाई, गन कहूं गत पाई, नित पढ़ाए करे असू।

सिद्ध साधक मिल जाग दे कर शिवराती जाति मेला महादेव अवधूत है कौला सन आसन रस केला गोरख जोगी जागदा गोरख जोगी जागदा गुरम शंकर।

आए संत परम कीर्तन हो छड़ न सके संत जाना ज्यों काम लुभावे त्यों हर दास।

0: गुरमुख जप है लाए
1: आए संत कीर्तन हो
0: छाट न सके शांत जाना राजद्वार न से सैन रूप हर होए के आया राम।

अहाव दुष्ट चौकड़ी सदा कूड़ कमावह ना बूझह विचारी निंदा दुष्टी ते केन फल पाया हरनाक्ष नखह बिदारी प्रहलाद जन सद हर गुण गावै हर जियो लय उबारी आपस को बहु भला कर जान है मन मुख मत ना कर

तेरा मन वसै भाई, सदा हर के गुण गाए रहाओ। नामै ते सब उपजे भाई, नाए विसरै मर जाए। अज्ञानी जगत अंध है भाई, तूते गए मोहाए। गुरमुख जागे से उभरे भाई, भवजल पार उतार। जग मैं लाहा हर नाम है भाई, हिरदय रखिया उरतार। गुर सरनाई उभरे भाई, राम नाम लिवलाए। नानक नाओ बेड़ा नाओ तुलहड़ा भाई, जित लग पार जन पाए। सोठ महला तीजा घर पहला, सतगुर सुख सागर जागे अंतर। होर थै सुख नाही, हौ मैं जगत दुख रोग व्यापिया। मर जन मैं रोवै ताही, प्राणी सतगुर सेव सुख पाए। सतगुर सेव है ता सुख पावह, नाही ता जाहेगा जन्म गवाई रहाओ। त्रै गुण धात बहु कर्म कमावह, हर रस साध ना आया। संध्या तर्पण करह गायत्री, बिन बूझे दुख पाया। सतगुर सेवे सो वड भागी, जिसनो आप मलाई। हर रस पी जन सदा तृप्तासे, विचों आप गवाई। एहो जग अंधा सब अंध कमावे, बिन गुर मग ना पाए। नानक सतगुर मिले ता अखी वेखे, घरे अंदर सच पाए। सोठ महला तीजा, बिन सतगुर सेवे बहुता दुख लागा। जुग चारे परमाई, हम दीन तुम जुग जुग दाते। शब्दे देह बुझाई, हर जियो कृपा करो तुम प्यारे। सतगुरु दाता मेल मलाव हो, हर नाम देव हो आधारे रहाओ। मनसा मार दुबदा सहज सुमानी, पाया नाम अपारा। हर रस चाख मन निर्मल होआ, किल बिख काटन हारा। शब्द मर हो फिर जीव हो सद ही, ता फिर मरन ना होई। अमृत नाम सदा मन मीठा, शब्दे पावे कोई। दात है दात रखी हाथ अपने, जिस पावे तिस देई। नानक नाम रते सुख पाया, दरगाह जाप है सेई। सोठ महला तीजा, सतगुर सेवे ता सहज धुन उपजे। गत मत तद ही पाए, हर का नाम सच्चा मन वसिया। नामे नाम समाए, बिन सतगुर सब जग बोराना। मनमुख अंधा शब्द ना जाने, झूठे भरम भुलाना रहाओ। त्रै गुण माया भरम भुलाया, हम मैं बंधन कमाए। जमन मरन सिर ऊपर उभो, गर्भ जोन दुख पाए। त्रै गुण वरत है सगल संसारा, हम मैं विच पत खोई। गुरमुख होवै चौथा पद कीने, राम नाम सुख होई।

सारा अमृत अगम अथाह रहाउ। आपे सुन सब वेखदा प्यारा मुख भूले आप मुहाउ। आपे उजड़ पाएं दा

आपे पतन पातनी प्यारा, आपे पार लंगा, आपे सागर बोहे था प्यारा, गुर केवट आप चला, आपे ही चढ़ लंगदा प्यारा, कर चोज वेखे पातशाह, आपे आप दयाल है प्यारा, जन नानक बख्श मला, सोरठ महला चौथा चौथा, आपे अंडज जेरज सेतज उत्पुज, आपे खंड आपे सब लोए, आपे सूत आपे बहुमणिया,

जन नानक हर रस त्रापे सोठ महला चौथा आपे कंडा आप तराजी प्रभे आपे टोल तलाया आपे साह आपे बनजारा आपे बणज कराया आपे धरती साजियन प्यारे पिछे टंक चढ़ाया मेरे मन हर हर त्याए सुख पाया हर हर नाम निदान है प्यारा गुरपूरे मीठा लाया रहाउ आपे धरती आप जल प्यारा आपे करे कराया आपे हुक्म वर्तदा प्यारा जल माटी बंद रखाया आपे ही पौ पाएदा प्यारा बन बकरी सिंह हंडाया आपे काष्ट आप हर प्यारा विच काष्ट अग्न रखाया आपे ही आप वर्तदा प्यारा पै अग्न ना सकै जलाया आपे मार जिवाएदा प्यारा साहा लेंदे सब लवाया आपे तान दीवान है प्यारा आपे कारे लाया ज्यों आप चलाए त्यों चलिए प्यारी ज्यों हर प्रभ मेरे पाया आपे जंती जंत है प्यारा जन नानक वजह बजाया सोठ महला चौथा आपे सिट उपाए दा प्यारा कर सूरज चंद चनान आप नताणिया तान है प्यारा आप निमाणिया मान आप दया कर रखदा प्यारा।

हर गुण गावे हर रस अंतर पाई नानक दीन दयाल भये है कृष्णा शब्द बुझाई सोरठ महला चौथा पंच पदा अचार चरै तां सिद्ध होई सिद्धि ते बुद्ध पाई प्रेम के सर लागे तन भीतर ता भ्रम काटिया जाई मेरे गोविंद अपने जन को देह वडियाई गुरमत राम नाम परगासु सदा रहो सरनाई रहाओ इहो संसार सब आवन जाना मन

उपाय वस्त अनूप अत अगम अगोचर गुरपुरा अलख लखाए जिन एह चाखी सोई जाने गूंगे की मिठाई रतन लुकाया लूकै नाही जे को रखै लुकाई सब किछ तेरा तू अंतर जामी तू सबना का प्रभ सोई जिसनो दात करह सो पाई जन नानक अवर ना कोई सोठ महला पंजवा घर पहला ते तुके एक ओंकार सतगुर प्रसाद किस हौ जाती किस आराधी जा सब को कीता होसी जो जो दिसै वड्डा वडेरा सो सो खाकू रलसी निरभउ निरंकार भव खंडन सब सुख नव निध देसी हर जियो तेरी दाती राजा मानस बपड़ा क्या सलाई क्या किसका मोहताजा रहा जिन हर त्याया सब किस तिसका तिसकी भूख गवाई ऐसा धन दिया सुख दाता नखोट ना कब ही जाई आनंद भया सुख सहज समाने सतगुर मेल मलाई मन नाम जप नाम आराध अन दिन नाम वखाणी उपदेश सुन साध संतन का सब चूकी कान जमाणी जिन कौ कृपाल हुआ प्रभ।

हो नानक जन तुमरा ज्यों पिता पूत कृपाला सोरठ महला पंजवा घर पहला चौतुके गुरु गोविंद सलाहिया पाई मन तन हिरदय तार साचा साहिब मन वसै पाई एहा करनी सार जित तन नाम ना उपजै पाई से तन होए चार साध संगत को वारिया पाई जिन एकंकार आधार सोई सच आराधना पाई जिसते सब किश होए गुरपूरै जानाया पाई तिस बिन अवर ना कोई रहाव नाम मिहूणे पच मोए पाई गणत ना जाए गणी बिन सच सोच ना पाईऐ पाई साचा अगम धणी आवन जान ना चुकई पाई झूठी दुनी मणी गुरमुख कोट उधारदा पाई दे नावै एक कणी सिमरत सात सोधिया पाई बिन सतगुर भरम ना जाए अनक कर्म कर थाकिया पाई फिर बंधन पाई चारे कुंडा सोधिया पाई बिन सतगुर नाही जाए वडभागी गुर पाया पाई हर हर नाम त्याई सच सदा है निर्मला पाई निर्मल साची सोई नदर करे जिस अपनी पाई तिस प्राप्त होई कोट मदे जन पाई है पाई बिरला कोई कोई नानक रत्ता सच नाम पाई सुन मन तन निर्मल होई सोठ महला पंजवा दो तुके जौ लो भाओ अभाओ इहु मानै तौ लो मिलन दुराई आन अपना

करी मैं के घर मन करी मैं जे सर्वम कली है जे सर्वम कली है जे सर्वत्र मान है जे सर्वत्र गान है जे सर्वत्र गान है जे सर्वत्र पावन है जे सर्वत्र देश है जे सर्वत्र देश है जे सर्वत्र राज्य है जे सर्वत्र साज है जे सर्वत्र दीन है जे सर्वत्र लीन है जे सर्वत्र जा हो जे सर्वत्र पाव के सर्वत्र देश है जे सर्वत्र देश है जे सर्वत्र काल है जे सर्वत्र काल है जे सर्वत्र अंत है जे सर्वत्र अंत है जे सर्वत्र पेशी जे सर्वत्र पेशी जे सर्वत्र काज है जे सर्वत्र राज है के सर्वत्र सुख है जे सर्वत्र दुख है जे सर्वत्र त्राण है जे सर्वत्र प्राण है जे सर्वत्र देश है जे सर्वत्र देश है जे सर्वत्र मान है सदैव प्रधान है जे सर्वत्र जाते हैं जे सर्वत्र जाते हैं के सर्वत्र पान है के सर्वत्र मान है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है के सर्वम कलीम है के परमम कलीम है के अकलो लाम है के सहव कलाम है के हुसन अल वजू है तमाम रुजू है हमेशल सलाम है गरीब मकान है जनीम शिकास्त है गरीब परास्त है वरिंदर मकान है जमीन जवान है कमीज अल तमाम है रुजू अल मकान है हरीफ अल अजीम है रिया गरीब।

अमृत पीवा। नदर करी ता सतगुर मेले, अनगन विवेक बुद्ध विचरै, अंदर साचा नेह पूरा सतगुर है। सत संगत मिलै बड़ भाग, ता हार रस आवे जीओ। आन बिन रहै निबलाई, ता सहज समावे जीओ। सहज समावै ता हर मन पावै, सदा सलामत अतीत बैरागी। हलत बलत शोभा जावे अंतर, राम नाम लिव लागी। अर्थ सोग दोहां ते मुक्ता, जो प्रभु करे सो पावे। सत संगत मिलै वडकार, ता हर रस आवै जीओ। दूजै भाई दुख होए, सा मन मुख जम जोया जीओ। हाय हाय करे दिन रात, माया दुख मोहया जीओ। माया दुख मोहया हमें रोया, मेरी मेरी करत आवे। जो प्रभ दे तिस चेतै नाही, अंत गया या पछतावे। बिन नावै को साथ न चालै, पुत्र कलत्र माया तोहया। दूजै भाए दुख लागै, मनमुख जम जोया जीओ। कर कृपा लिहो मिलाए, मैल हर पाया जीओ। सदा रहै कर जोड़, प्रभ मन पाया जीओ। प्रभ मन पावै तां हुक्म समावै, हुक्म मन सुख पाया। अन दिन जपत रहै दिन राती।

गुरु प्रसाद। हम अवगुण परे एक गुण नाही, अमृत चाट बिखर बिख खाई, माया मोह पन पर फूले, सुख दारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेह मिलंत जम त्रास मिटाई,

दूजा अमृत नाहे। नानक अमृत मन माहे पाईए गुर प्रसाद तिनी पीता रंग से।

सेवकते में कर्म चढ़ाओ जिना जिना मन चाहो चिकित्सा गुरु विचार नजरे कर्म लंघाए पार ओलू चरखा चक्की चक थल वालो ले बहुत अनंत लाटू माधानिया अनघा पंखी पौधिया लैन।

पौड़ी तक सतगुरु निर्णा पायो फिर सतगुरु के निर्णा पाया सतगुरु चाप रखियो न कर प्रगट आप सुनाया सतगुरु मिलया सदा मुक्त है जिन विचो मोह चुकाया उत्तम हो विचार है जिन सच्चे सो चित लाया जग जीवन दाता पाया जग जीवन दाता पाया।

थोड़ी देर की संतोख ही सचो सच से आया कोनी मंदा पैर न रखियो कर सो कर धर्म कमाया कोनी दुनिया तोड़े बंदना अन पानी थोड़ा खाया तू बख्शी सी अगला देवा चढ़ा सवाया वड्याई बड़ा पाया वड्याई बड़ा पाया।

0: चिंता करे जिन उपाया जग तिस्वारी सिवान अभग नानक सच्चे नाम बिन क्या टिका क्या तक।
1: अल्लाह पहला लख नेकियां चंगिया लख ना परवाड़ लख कप प्रतीसा सहजो बेबाड़ लख सुरतन संग्रह।

शरीर दिल समझ का बहुत बिहार, मन न रहे कैसे मिलाऊं प्यार, एक पल जिस मौको

0: द्वापर रात सपा का सगर सवाओ त्रेता रात जत का जो घर सवाओ द्वापर रात सपा का सगर सवाओ काल जुग रात सगन का पूरा घर
1: सवाओ है सितंबर स्वामी सच में आज सात रहे सबको सत्सवावे रिक गरे अपर पूरा नाम देवा महदूर नाय ले अपराध जाए नाम तो मुखंत्र पाए जिन्ना जोर थली चिंद्रावन काम चिंद्रावन पाया बाहर जात को पी आया बिंद्रा बा नरम किया कल मैं में अथर्पण हुआ ना खुदाई अल्लाह भया नील बास में कपड़े पहले त्रिपदानी अमल किया चारे वेद हो सके अपने गुण चार विचार पाप भक्त करने

नाम जपत अगनत अनेकै ते पुराण सिमरत सुदाथर सिने राम नाम काथर सिनका एक जिसकी बतावे ताकि महिमा जनी नावे ताकि एक है दर सुहारो नाम तुम समय उधारो सुख मनी सुख अमृत प्रभु नाम भगत जना कै मन विश्राम राव प्रभु कै सिमरन गर्व न बसै प्रभु कै सिमरन दुख जन्नत है प्रभु कै सिमरन काल पर हरे प्रभु कै सिमरन दुश्मन तरे प्रभु सिमरत कछु बिघ्न न लागे प्रभु कै सिमरन अन दिन जागे प्रभु कै सिमरन भव न व्यापे प्रभु कै सिमरन दुख न संतापे प्रभु का सिमरन साध के संग सर्व निधान नानक हर रंग प्रभु कै सिमरन रिद सिद्ध नानित प्रभु कै सिमरन ज्ञान ध्यान सतगुद प्रभु कै सिमरन जप पूजा प्रभु कै सिमरन बिनसै दूजा प्रभु कै सिमरन तीरथ स्नानी प्रभु कै सिमरन दरगह नानी प्रभु कै सिमरन होए सुभला प्रभु कै सिमरन सुफल भला से सिमरे जिन आप सिमराए नानक शांत लागो पाए प्रभु का सिमरन सबसे ऊंचा प्रभु कै सिमरन सुधरे मूचा प्रभु कै सिमरन कृष्णा बुद्ध है प्रभु कै सिमरन सब कुछ है प्रभु कै सिमरन नाई जम त्रासा प्रभु कै सिमरन पूर्ण आशा प्रभु कै सिमरन मन की मल जाए अमृत नाम हृदय समाए प्रभु जी बसे साध की रचना नानक जन का प्रभु को सिमरे से धनवंते प्रभु को सिमरे से पतवंते प्रभु को सिमरे से जन प्रवान प्रभु को सिमरे से पुरुष प्रधान प्रभु को सिमरे से बे मौता जे प्रभु को सिमरे से सर्व से राजे प्रभु को सिमरे से सुवासी प्रभु को सिमरे से दायक नासी सिमरन ते लागे जिन आप दयाला नानक जन की मंदिर वाला प्रभु को सिमरत परोपकारी प्रभु को सिमरत निकट बलहारी प्रभु को सिमरत मुख सुहावे प्रभु को सिमरत सुख बिहावे प्रभु को सिमरे तिन आत्म जीता प्रभु को सिमरे तिन निर्मल रीता प्रभु को सिमरे तिन अनद धनेरे प्रभु को सिमरे बसे हर मेरे अंत चर पाते अन दिन जात नानक सिमरन पूरा धागे प्रभु कै सिमरन कार सूरे प्रभु कै सिमरन कबु न झूरे प्रभु कै सिमरन हर गुण गानी प्रभु कै सिमरन सह समान प्रभु कै सिमरन नै चले आसन प्रभु कै सिमरन कमल विरासन प्रभु कै सिमरन अनहद संसारे सुख प्रभु सिमरन का अंत न पार सिमरे से जन जिनको प्रभु में नानक सिम जन कर पाया हर सिमरन कर भगत प्रगटाए हर सिमरन लगे उपाए हर सिमरन भय सिद्ध गति दाते हर सिमरन नीचौ गुण जाते हर सिमरन धारी सब धरना सिमर सिमर हर कारण करना हर सिमरन कियो सगल आकारा हर सिमरन में आप निरंकारा कर कृपा जिस आप बुझाया नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया तो दीन धरद दुख भंजना घाट घाट नाथ अनाथ करण कुमारी आयो नानक के प्रभ साथ अश्वरी जय मात का सुनीत न भाई मनुआ नाम तेरे संग सहाई जय महाबयान दूत गंदल है नाम संग तेरे चले
जे मुश्किल होवे अत भारी, हर को नाम छिनवाए उधारी। अनेक सुने चरण करत नहीं करे, हर को नाम को पाप पर हरे। गुरमुख नाम जपो मन मेरे, नानक पावो सुख खनेरे। सगल सिख को राजा दुखिया, हर का नाम जपत सुखिया। लाख करोड़ी बंधन पर है, हर का नाम जपत न करे। अनक माया रंग कृष्ण बुझावे, हर का नाम जपत आधावे। जे मार्ग एव जात केला, ते हर नाम संग हो सुला। ऐसा नाम मन सदा धियाए, नानक गुरमुख परम जस पाए। सूचक नहीं सोच लगवाई, नाम जपत है पार पर आई। अनक जगन जे आए सिंगारे, हर का नाम तत्काल उधारे। अनक जोन जन्मे मर जामे, नाम जपत पावे विश्राम। हों मेला मलकभ मन होवे, हर का नाम को पाप खोवे। ऐसा नाम जपो मन रंग, नानक पाइए साध के संग। जे मारे ते जने जाए न पूछा, हर का नाम हुआ संतोषा। जे पेड़े मांग गुबारा, हर का नाम संत ग्यारा। जहां पंत राखो न सियानू, हर का नाम ते नाल पछानू। जे मां भयान तपत बहु धाम, ते हर के नाम की तुझ ऊपर थाम। जहां त्रिखा मन तुझ आकर थे, ते नाम क हर हर अमृत भर थे। भगत जना की बरत नाम, संजना के मन विश्राम। हर का नाम दास की ओट, हर के नाम उठे दिन कोट। हर जस कर संत नरात, हर हर औ प्रसाद समात।

0: हर का नाम जनता रूप रंग, हर नाम जगत का परे न भंग, हर का नाम जनकी बढ़ियाई, हर के नाम जनको भापाई, हर का नाम जनको भोग जोगे, हर नाम जगत कितना ही योग। जन राता हर नाम की सेवा, नानक पूजय हर हर देवा, हर हर जन के माल पीना, हर धन जन को आप प्रभुना, हर हर जन के ओठ ठिकाने, हर प्रताप जन अब न जाने, ओठ पोत जन हर रचलाते, तुम समाज नाम दुष्माते, आठ पैर जन हर हर जपे, हर का भगत कई में छपे, हर की भगत मुक्त भाव करे, नानक जन संग से करे, पार जाते हर को नामे, काम दिन हर हर गुणगान, सबसे उत्तम हर की कथा, नाम सुन कर सुगलथा, नाम की महिमा संत विद्वत है, संत प्रताप दुर्ग सगन से, संत का संगवर भागी पाई जाए, संत की सेवा नाम से आइए, नाम सुन कछ अब न हुए, नानक गुरमुख नाम पावे जन हुए, बहुत सर बहु स्मृति देखे सर्व झंडोल, पूजत नाम हर हरे, नानक नाम अमोले। अश्वरी जाप ताप ज्ञान परिख्याने, हर का स्मृति ज्ञान, योग अभ्यास कर्म धर्म क्रिया, सर त्याग मन मध्य क्रिया, आने के सरकार किए बो जितना, तुम दान हो मैं बो रतना, रीर कटाए हो मैं कर जाती, वर्त नहीं करे बो भांति, नहीं सुन राम नाम जी प्यार, नानक गुरमुख नाम जपिए इस बारे, नौखंड पृथ्वी श्री सिर जिए, महादास पति सर जिए, अगर माए मोहम्मद प्राण, कनक आठ है अगर भूम दान, निवली कर्म करे गो आसन, जैन मार्ग संयम साधन, निमत निमत कर सिर सटावे, तो भी हो मैं मैल न जावे, हर के नाम सम कर सुनाई, नानक गुरमुख नाम जपत गत पाए, मन कामना की निर्देश कै कर गुमान नमन से होते, सोच करे दिन अर रात, मन की मैल न संते जात, जिसके को बहुत साधना करे, मन से कबू न बिछिया करे, जल दोवे बोधे अनंत, सुख का होए काची गीत, मन हर के नाम की मैं माए, नानक नाम उधरे पतित बहुमूते, बहुत ज्ञानक जन का भव्यते, अनेक जतन कर कृष्ण ना धाते, एक अगे अनेक अगन दिखे, कोट उपाव भजे ने सिजे, सूतक नाए उसे आले, मोय गया से माया जाल, आवर कर तू सगली जिंदाने, गोविंद भजन बिन सिर नहीं माने, हर का नाम जपत दुख जाए, नानक बोले जिस भाए, चार पदार्थ जिसको मांगे, साधना की सेवा लागे, जिसको अपना दुख मिटावे, हर हर नाम हृदय सजावे, जिसको अपने शोभा लोड़े, साध संग एहो में छोड़े, जिसको जन मरण से डरे, साधना की शरणी पड़े, जिस जन को प्रभु दर्शन से आता, नानक साते बल बल जाता, सगल पुरुष में पुरुष प्रधान, साध संग जा साधते अभिमान, आप को जो जाने नीचा, तो गनिए सबसे ऊंचा, जानता मन हो सगल पीरीना, हर हर नाम तिन धड़ धड़ सीना, मन अपने से बुरा मिटाना, देखे सगल से साजना,
1: सुख दुख जल समुद्र सचेताला नानक पाप पुण्य नहीं देता। निर्धन को धन तेरो नाम, मिथावे को नाम तेरा धाम, निमाने को प्रभ तेरो मान, सगल भूता को देवो दान। करन करावन हार स्वामी, सगल घटा के अंतर जामी, अपनी गत मित जानो आपे, आपन संग आप प्रभु राते। तुमरी उसका तुमसे होए, नानक आवर न जानत होए। सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म है, हर को नाम जप निर्मल कर्म, सगल क्रिया में उत्तम क्रिया, साध संग दुरु मत मल दिया। सगल दम दम बला, हर का नाम जपो जी सदा,

जगे भगवते हर नाम लो निर्गुणियारे अनया तो प्रभु सदा समाल जिनके आतिथ्य सुत रख नानक निधि नाल परे रमैया ते तुम सेठ परानी सब मूल से तुम जितानी।

नाम सुखी थे। ये प्रसाद धरु पर सुख बसे, सुख भात की पंता संग हसे। ये प्रसाद पीवे शीतल जला, सुखदाई पवन पावत अमूला। ये प्रसाद भोंगे सब रखा, सब समरी संग साथ बसा। दीने हस पाव कर्म नेत्र रचना, तिसे त्याग अवर संग रचना। ऐसे दो मूड़ अंग दे आपे, नानक का दिल सब आपे। आर्यंत जो रात में हारे, तिसने कृष्ण करे जवार। जाकी सेवा नव नित पावे, सासु मूड़ा मन लावे। जो ठाकुर सब सदा हजूरे, सासो अंधा जानत दूरे। जाके सहल पावे दरगे माने, तिसे बिचारे मुझे अजान। सदा सदा यो भूलन हारे, नानक राखन हारे अपारे। रतन त्याग पौधे संग रचे, साज छोट झूठ संग मचे। जो सन्ना स्वचन करमाने, जो होवन सो दूर पुराने। छोड़ जाए जिसका श्रम करे, संग साए किस पर हरे। चंदन लेख उदारे धोए, दर्द प्रीत प्रसन्न संग होए। अंधे से तुमे पतक बिकराले, नानक का डले ओ प्रभु ज्ञाने। करतूत पशु की मानस जाते, लोग पचारा करे दिन रात। बाहर देखन कर मलमाया, सत स्नान कर करे छपाया। बाहर ज्ञान ध्यान स्नान, अंतर व्यापे लोग समान। अंतर अगन बाहर तन स्वा, गल पाथर कैसे कर अथा। जाके अंतर बसे तुव आपे, नानक के जन सहज समाते। तुम अंधा कैसे मार्ग पावे, कर दे लो और नि पावे। कहाँ बुजारत बूझे दौड़ा, निश्चये तो समझे भौरा। कहाँ बिसन पद गावे गुंगे, जतन करे तो भी सुर भंगे। कै सिंगल पर्वत पर भवन, नहीं हो सुजन। करे तार करुणा में, दीन बेनती करे। नानक तुमरी कृपा करे, संग साई सुहाग नसीत। जो बैराई का संकीत, बलवा तिग्रह दी सरबत है। आनंद खेल माया रंग रसे, दृढ़ कर माने मने प्रतीत। काल न आवे मूड़े पीत,

जनम दान से राख ले आपन कर कर तू ठाकुर तुम पैदास जियो पिंड सब तेरी आस मात पिता हम बालक तेरे तुम्हारी कृपा में सूत मेरे कोई न जाने तुम्हारा अंत ऊंचे ते ऊंचा भगवंत सागर समेरी तुम्हारे सूत्रधारी तुम ते हो सुआज्ञाकारी तुम मेरी गत में तुम्हें जानी नानक दास दास गुरबानी लोक दिन हर पर छोड़ के लागे आंसू आए नानक कहू न गए दिन नावे पट जाए अच्छी दस वसूले पट पावे एक बस कारण भी खोट जवावे एक दिन ना दे दसी हरले तो मूड़ा को कहा करे जिथा गुरु ना निचारा सासो की जे सब नस्ता सद नमस्कारा जाके मल्ला दा प्रमीता सर तू साउ मनु उठा जिस जने अपना हुक्म मनाया सरव शोक नाम से न पाया अग्न सावनि दे रास खात पीत बरते आनंद उलास अपनी अमान सच बहुत साहले एक अज्ञानी मन रोष करे अपनी प्रतीत आप ही खूबे बरस का विश्वास न होए जिसकी बस तिस आगे रख प्रभु की आ गया माने माथे उसे चौगन करे निहाले नानक साहिब सदा दयाले अनक भात माया के हेत सर पर होत जान अनेक बिरसी छाया सू रंग लावे ओ बिन से ओ मन पछतावे जो दी से सुचालन हार लपट रहो सै अंधे अंधार बताओ जो लावे ने साको हाथ ना आवे के मन हर के नाम के प्रीत सुखदाई कर कृपा नानक आप ले लाई मिथ्या तन धन सितमाया मिथ्या होमे ममता माया मिथ्या राज दोपन धन माल मिथ्या काम क्रोध विकराल मिथ्या रथ हसी अथ बसरा मिथ्या रंग संग माया पेख हसा मिथ्या धो मोय अभिमान मिथ्या आप ऊपर कर गुमान अचर भगत साध की शरणा नानक जप जप जीवे हर के चरण मिथ्या शर्म पर निंदा सुने मिथ्या हस पर गर्व गुजरे

बिरथी सा सुखी यार जा, साथ बिना से हो दूजा, बिरथा नाम बिना सन्यंदे, मुखावस्था के दुर्गंध।

0: गोविंद भजन बिन सिर काम ज्यों कृपन के निरारत दाम।
1: धन धन ते जन जे घट बस्यो हर नाम, नानक ता कै बल बल जाओ।
0: रहत अवर कछ अवर समावत, मने प्रीत मुखो गंदलावत, जानन हार सबो प्रवीन, बाहर देख न काहे भीन।
1: अवर उपदेश है आप न करे, आवत जावते जन में मरे, जिसके अंतर बसे निरंकार, किसकी सीख करे संसार। जो तुम भाने तिन प्रभ जाता, नानक उन जन चरण पराता।
0: करो बेनती पार्वन सब जाने, अपना कीजा आपे माने।
1: आपे आप करत मेरा, किसे दूर जनावत किसे बुझावत मेरा। उपाव से आलम सगल तेरे, सब कट जाने आत्म की रहत।

मत जपनान हरे लोग काम क्रोध अर लोभ मोह दिन से जाय अहमेर नाम तो प्रभु शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव। जिन प्रकार शक्ति अमृत खाए जिस ठाकुर को रखन माए जे प्रसाद सुगंध संलावे सिखो स्मृत परम जस पावे जे प्रसाद बसे मंदिर सिखे ध्याय सदा मनि अंदर

स्वाध्याय केवल पार्वम प्रभु जपते दर्गे मान पवे नाम सुपत से हर जाए। जय प्रसाद आरोग्य चंचन दे देवलावो की प्राण सने। जय प्रसाद तेरा ओला रहते मन सुख पावे हर हर जप कैत। जय प्रसाद तेरे सगल सिद्ध धाते मन सरणी पर ठाकुर सब ताके। जय प्रसाद तुझको न पहुँचे मन साथ सुनो प्रभु ते। जय प्रसाद पाए दुर्लभ रे नानक ताके भगत करे। जय प्रसाद आभूषण तेरे के मन मृत्यु वाल कीजे। जय प्रसाद हसु हस हसवारी मन से सुप्रभ को

नाम से रखे ये प्रसाद करे तुमको दाने मनात है सब का ध्यान ये प्रसाद तुम आचार दुहारी इस प्रभु साथ साथ सितारी ये प्रसाद तेरा सुंदर रूप तो प्रभु सुमरो सदा अनूप।

पत रहे गुरु प्रसाद नाम जस कहे जे प्रसाद करनारे जे प्रसाद मार जे प्रसाद बोले अमृत रचना जे प्रसाद सिखे जे बचना जे प्रसाद हट कर चले जे प्रसाद संपूर्ण पले जे प्रसाद परम गत पावे जे प्रसाद सिखे समावे ऐसा प्रभ त्याग अवर कस लागो गुर प्रसाद नानक मन जागो जे प्रसाद तू प्रश्न सारे ते प्रभ को मूल ना मनो विसारे जे प्रसाद तेरा प्रताप ते मन मूल तुसारे।

सार जनाती अचरजे कथा साध से संग जल होत साध संग मल सदीप होत साध से संग मिटे अभिमान साध से संग प्रगटे सो ज्ञान साध से संग बुझे प्रभु नीरा साध संग सब होत निबेरा साध के संग पाए नाम रतन साध के संग ऊपर जतन साध की महिमा बने सुनतानी नानक साध की शोभा प्रमाण समान साध के संग अगोचर मिले साध के संग सदा परु फुले साध के संग आवे बस पंचा साध संग अमृत रस घुंचा

साध से संग सुखित मन पावे, साध संग माया से साध संग नाम प्रभु को प्रसन्न, साधु संग मन सब मीत, साधु के संग महापुनीत, साधु संग क्यों नहीं बैर, साधु के संग न बीजा बैर, साधु के संग नहीं को मंदा, साधु संग जाने परमानंदा, साधु के संग नहीं हो ताप, साधु के संग सजे सब आप, आपे जाने साधु बढ़ाई, नानक साधु प्रभु बने आई, साधु के संग लगव हूँ भवे, साधु के संग सदा सुख पावे, साधु संग साध संग बस गोचर ले, साधु के संग अजर सहे, साधु के संग बटे थान के, साधु के संग महल पहुँचे, साधु के संग दृढ़ सब धर्म, साधु के संग केवल पार ब्रह्म, साधु के संग पाए नाम निधान, नानक साधु कै गुरुवान, साधु के संग सकुल उधारे, साधु संसारी सुगम सारे, साधु के संग शोधन पावे, जिसन से सब को वरसावे, साधु संग धर्म राय करे सेवा, साधु के संग शोभा सुरु देवा,

सफल जनम साध के संग नहीं कछ ढाल दर्शन होत निहाल साध के संग चलो खत हरे साध के संग नरक पर हरे साध के संग आऊआ सुहेला साध संग फिरत हर मेला जो इसे सोई फल पावे साध के संग न बिरथा जावे पार ब्रह्म सागर बसै नानक उदरे साध सुमर साध के संग सुनो हर नाम साध संग हर के गुण गाओ साध के संग न मन ते बिसरै साध संसर पर नित करे साध के संग लगे प्रभु मीठा साधु के संग सतगत दीठा साध संग भया गया करी साध संग गत थी।

को उदय को चंदन ले ब्रह्म जानिता है गुना नानक जो पावत का है विश्वास ब्रह्म ज्ञानी निर्मल से निर्मला जैसे मैल न लागे जला ब्रह्म ज्ञानी के मन होए प्रगाश जैसे भरू परियाकाश ब्रह्म ज्ञानी के निष्कत समान ब्रह्म ज्ञानी के नाई अमान ब्रह्म ज्ञानी ऊंचे से ऊंचा मन अपने है सबसे ऊंचा ब्रह्म ज्ञानी से जन्म है नानक जुन सब आप करे ब्रह्म ज्ञानी सगल के नाया तुम रस ब्रह्म ज्ञानी सीना ब्रह्म ज्ञानी की सब पर मया ब्रह्म ज्ञानी से कचुरा न भया ब्रह्म ज्ञानी सदा सौदर्शी ब्रह्म ज्ञानी के दृष्ट अमृत वर्षी ब्रह्म ज्ञानी के बंधन से मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का तम ध्यान

ब्रह्मज्ञानी सदा सद जागते ब्रह्मज्ञानी अहम बुद्ध त्यागते ब्रह्मज्ञानी के मन परमानंद ब्रह्मज्ञानी के घर सदानंद ब्रह्मज्ञानी सुख चैन निवासे नाम तो ब्रह्मज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म का बेटा ब्रह्म ज्ञानी एक संहेता ब्रह्म ज्ञानी कहे अचिन ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मन ब्रह्म ज्ञानी जिस करे तब आपे ब्रह्म ज्ञानी का बद प्रताप

मैं सुर नाम तो ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाए ब्रह्म ज्ञानी के सकल मनवाए ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश ब्रह्म ज्ञानी का कथा न जाए दास ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर।

ब्रह्म ज्ञानी शांत न पार, नाम को ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सब कुछ करता, ब्रह्म ज्ञानी सब जीवे नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुख गुरु जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष दाता।

नाने तो ब्रह्म ज्ञानी सर्व साधन। ओ उर्धारे जो अंतर नामे शरम में देखे भगवान निमख निमख ठाकुर नमस्कारे नान को अपर सगल निकारे परी मान मिथ्या नाही रखना पर से मन में प्रीत निरंजन दर्शे पर त्रिया रूप न पेखे नेत्र साध के पहले संत संग हेत करल न सुनए कहूँ की निंदा सबसे जाने आपस को मंदा गुर प्रसाद दिखा पर हरे मन की वासना मन से करे इंद्रे जिते पंच दोष रहते नानक को समझे को ऐसा पर से बैसलो सो जिस पर सो पर चला जिसम की माया ते हुए धन कर्म करत हो।

बल भगत कीर्तन सुराते मन तन अंतर सिमरन गोपाल पर होवत कृपाल आग्रह नंद पवे नान तो बैसनो परम गत पावे भगवती भगवंत भगत कारंगे परम त्याग प्रसंगे मनते दिन से सगला घर में पर पूजे सगल पार ब्रह्मे साध संग पापा मल भगवती की मत उत्तम हो गए भगवंत के पहले।

भगवती भगवंत कुपार तो पंडित जो मंत्र बोलता है राम नाम आत्म में सोदय राम नाम सार रखती है उस पंडित का उपदेश जगदी।

जिसके मन पार ब्रह्म का निवास जिसका नाम सत रामदास आत्म राम कृष्ण गृह आया दास संत भाई तिन पाया सदा निकट निकट हर जाने तू दास डर गए परवान अपने दास को आप कृपा करे किस दास को सब तुझे परे सगल संग आत्मीयता।

अरे अस्तरी कई कोट है पुजारी, कई कोट आचार व्यवहारी, कई कोट है तीर्थवासी, कई कोट बन भर में उदासी, कई कोट वेद के सिर होते, कई कोट पति सिर होते, कई कोट आत्म ध्यान धारे, कई कोट कविता विचारे, कई कोट नवतन नाम ध्यावे, नानक करते कायंत न पावे, कई कोट भय अभिमानी, कई कोट अंत अज्ञानी, कई कोट कृपन कठोरे, कई कोट अभिद आत्म निकोरे, कई कोट पर दर्द कहे, कई कोट पर दुख न करे, कई कोट माया शर्माए, कई कोट परदेश भरमाए।

कई कोट सिद्ध गति जोगी, कई कोट राजे रस भोगी, कई कोट पंथी सर को पाए, कई कोट पात्र देश निर जाए, कई कोट पाऊ पानी बैसंतर, कई कोट देश भूमंडल, कई कोट शशियर चूर्ण छत्र, कई कोट देव दानव इंद्र सिर छत्र, सगल सगरी अपने सूत धारे, नानक जिस जिस भावे।

भूत प्रेत सुकर निर्गात। सब ते निरे सब ते दूर नानक आप अलतुरया भरपूर। कई कोट पाताल के वासी कई कोट नरक सुरत निवासी। कई कोट जल में जीवे मरे कई कोट बाजूनी फिरे। कई कोट बैठते खाए कई कोट भाले थक पाए।

हाथ कई कोड़ भय बैरागी राम नाम सुन सुन लागी कई कोड़ प्रभु को खोजन आत्मे पार ब्रह्मूल हंते कई कोड़ दर्शन प्रत्यास तिनको मिलियो प्रभु अवनाश कई कोड़ मांगे सत्संगे पादुम सुन लागा रंगे जिनको हो आप सो पर सुन मानिक के जन सदा धन धन कई कोट खाणी अर खंडे कई कोट आकाश ब्रह्मंड कई कोट हुए अवतार कई ज्योतियों विस्तार कई बार पसर उपासार सदा सदा एक एक अंकार

से प्रभु सोए तय को पारगम के दास तिन होवत आतंत्र गात तय को तत्के बेते सदा निहारे को नेत्रे तय को नाम रखिए अमर भय।

श्लोक चरण चरण प्रवे तो है दूसर नान सुख बलहारण जल थल में जल सोए अस्त्री करण करावन करने जोगे ज्योति भाव सोई हो गए में थाप उठापन हरा अंत नहीं दिल पारा वाला उसमें धार अधर रहा वै उसमें उपमावे हुक्म में ऊंच नीच व्यवहार हुक्म में

करावे इसे हाथ हो ता सब दिख ले जो तिस भावे सोई करे आने जानत दिखावे रचे जे जानत आपन आप बचे घर में भूला दे दिस भावे निमुख माय चार पुन करे आवे कर कृपा जिस अपने भगदे नानक ते जन नाम मिले सुनवे निपुराज पार ब्रह्म गरीब निवाज जाका दृष्ट छूना आवे तिस तत्काल दै दिस प्रगटावे जाको अपनी करे बख्शीश ताका लिखा न गले जगदीश जियो पिन सब तुसी राख घट घट पूरा।

ज्ञान कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे नानक मुख आगे सुख पावे धनवंता हो कर गावे मान सत्संग न जावे बहुल अक्षर मानस ऊपर करे आसे बल भीतरता का हुए विनाश सत्य आप जाने बलवंते जिनमें हुए जाए भस्मंत किसे न बदे आप अहंकारी धर्म राय तिस करे खुआरे गुर प्रसाद न करते अभिमाने सो जन नाम च डर गए परवाने कोट कर्म करे ओंधारे कर्म पावे सगले बिरथारे अनेक तपस्या करे अहंकारे नरक सुरत फिर करे अवतारे अनेक जतन कर आत्म नहीं डरवे हर दरगे को कैसे गवे आपस को जो भला कहवे जिसे भलाई मित्र न आवे

जब लग जाने से पिछोए तब इसको सुख नहीं कोए, जब जाने में कि करता तब लग गर्व जौन में फिरता, जब धारे को बैरी में तब लंगे चलना ही पीत।

लग धन मुराए ते सजाए। सब कृपा ते बंदन तुसे गुरु प्रसाद नानक ओते। सैन खटे लख को संधावे तृप्त नयावे माया पाछे पावे। अलग भोग दिखा के कहे न तृप्तावे थक्त मरे बिना संतोष नहीं पूरा जे। सुपन मनोरथ बिरथ सब काज नाम रंग सर्वसुख होए। दुर्भाग्य किसे प्राप्त होए करण करमनि आपे आप सदा सदा नानक अरे जापे। करण करावन करन हार किसे हाथ विचार जैसे दे करे तैसा होए आपे आप प्रवित होए। जो किसी नो सो अपने रंग सबसे दूर सबों के संग बूझे देख कर देख आपे एक आपे अनेक। मरे न बिन सयावे न जाए नाम सदगुर आसमाए। आप उपदेश है समझे आपे रचिया सब कैसा आप कीनो आपन सारे करने हारे। उस दिन कहो कि सोए थान थन करे सोए। अपने चरण आप करने हारे कौत करे रंग पार मन में आपे मन अपने माहे नान कीमत न जाए। सते सते सत प्रभु स्वामी गुरु प्रसाद ने वसियानी। सच सच सच सब कीना कोट मधे तिन मिले सीना। भला भला भला तेरा रूपे सुंदर अपार रूपे। निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी झट झट सुनी स्वर्ण बखाणी। पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत नाम जप नानक मन प्रीत। संत शरण जो

परे। संत के दुखन हार जान हटै, संत के दुखन जमते नहीं छुटै। संत के दुखन सुखल जाए, संत के दुखन नरक में पाए। संत के दुखन मत होए मलीन, संत के दुखन तो भाते हीन। संत के हते को रखन कोए, संत दुखन खान घसोए। संत कृपाल कृपा जे करे, नानक संत संग निंदक भी करे। संत के दुखन ते मुख भवै, संतन कै दुखन साग जू लवै। संतन कै दुखन सर्ब जौन पाए, संत दुखन प्रग जौन करमाए। संतन कै दुखन तृष्णा में जलै, संत दुखन सब को चलै। संत कै दुखन तेज सब जाए, संत कै दुखन नीच जाए। संत की कथा तो नाए, नाम संभावे ता ओए दिगत पाए। संता निंदक मार जाई, संता निंदक संकित न पाई। संत का निंदक मां प्यारा, संत निंदक परमेश्वर मारा। संत का निंदक राग से हीना, संत का निंदक दुखिया अर दीना। संत के निंदक को सर्व रोगे, संत के निंदक को सदा विजोगे। संत के निंदा दोख में दोखे, नानक संत भावे ता उसका भी हुए मोखे। संत का दुखी सदा अपते, संत का दुखी से सहता नहीं मिटे। संत के दुखी को दान ना गए, संत के दुखी को सब त्याग गए। संत का दुखी महा अहंकारी, संत का दुखी सदा विकारी। संत का दुखी जन्म मरे, संत की दुखना सुख से डरे।

नानक दुख भरम हो जाए। अपरी मान के देख में सब जाने देवन को एक अर्जुआन जिस दिए रहे अघाए बहुत न कितना लागे आए मारे राखे को आप मानते कितना ही हाथ जिसका हुक्म बोल चुक होए जिसका नाम रत कंठ परोए सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए मान तो बेधन न लागे कोए उत्तत मन में कर निरंकार कर मन मेरे सत व्यवहार निर्मल रचना अमृत पियो सदा सुहेला कर ले जियो नैनों पेख ठाकुर तारंगे साध संगो बिन से सब संग चरण चलो मार गोबिंद मिटे पाप जपिए हर बिंद कर हर कर्म सुगम हर कथा हर दर्गे नाम तू जल मथा बड़ भागी ते जन जग माए सदा सदा हर के गुण गाए राम नाम जो करे विचार से धनवंत जन संसार मंथन मुख बोले हर मुखी सदा सदा जानो से सुखी एको एक एक पछाने एक उठ की ओर।

पुर प्रसाद अपना सुजे तू जानो कृष्णा बुझे साद संग हर हर जस कहते सर्व से सर्व रोग से ओ हर जन रहत अनदिन कीर्तन केवल बखाने ग्रस्त में सोई निर्वाण एक ऊपर जिस जन की आशा किसकी कटी है जब की पासा।

से, जिसको हर्षम मन चित आवे तो संकोच ला नहीं दुलावे, जिस पर अपना कृपा करे तो सेवक कहो किससे डरे।

सोदत सुनिया गुरु प्रसाद सतगुरिया। जब देखो तब सब किस मूल नानक तो सुखम सोई असूल न कि जन्मे न किस मर आप में चलित आप ही कर आवल जावल दृष अंदृष आज्ञाकारी धारी सब कृष आपे आप सजन में आप अंत जुगत रच थापे ओ थाप अविनाशी नाई कित खंड धारण भार रहो ब्रह्मंड पलख अभेव पुरख पर पाप जपाए नानक जाप जिन तब जाता तो शोभावंत सगल संसार उभरे तिन मंत प्रद के सेवक सगले उधारन कल के सेवक दूख विसारन आपे मिल ले किरपाल कुल का सब जप भय निहाल आपे मिल ले किरपाल कुल का सब जप भय निहाल इनकी सेवा सोई लागे जिसनु कृपा करे बड़ भागे नाम जपत पावे विश्राम नाम कृष्ण प्रभु को सम करमा जो कित करे सो प्रभु कै रंग सदा सदा बसे हर संग सहज सुभाए होवे सो होए करणे हार पछाणे सोए प्रभु का किया जन मीठ लगाना जैसा सात सादृश टाना जिससे उपजे जिस माए समाए सुख निधान उन्हों बन आए

श्लोक। सर्व कला भरपूर का बिरथा जानन हारे, जाओ के सिमरन उदरिए मानित तिस फलहार करे। सूते गांडन हार गोपाले, सर्व जीवां पे तित पाले। सगल की चिंता जिस मन माहे, तिस पे बिरथा कोई नाहे। जे मन मेरे सदा हर जापे, अवनाशी प्रभु आपे आप। आपन किया कछु न होए, जे सो प्राणी लोके कोए। तिस बिन नाही तेरे किस का।

सोत सगल घट सोहै। धनवंता हूँ क्या को गर्व है, जा सब किसका दिया दर्वे। अस्तूरा जे को कहवे, प्रभु की सलाह बिना कह धावे। जे को होए बैदातार, तिस देन हार जाने गवार। जिस गुर पर सातु ते हो रोगे, नान सो जन सदा रोगे। जो मंदर को थामे थमन, तुम गुर का शब्द मने अठमन। जो पाखाण नाव चर तरे, नानी गुरु चरण लगन निस्तरे। जो अंधकार दीपक पर दगाच, गुरु दर्शन देख मन होए बिगाच। जो माव ध्यान में मार्ग पावे, साधु संग जो प्रगटावे।

चाहे दिल लाइए पूर्व लिखी काल किया पाइए। दुख सुख प्रभु देवन हारे अवर त्याग पिछे सितारे। क्यों कछ करे सोई सुख मान भूला चाहे तेरे अजान। कौन बस आई तेरे संग लप्त रहो रस लोभी पतंग। राम नाम जप हृदय माए मानुष पथे की भर जाए। जिस बक्सर को लेन तू आया राम नाम संतन घर पाया। सजब मान ले ओ मन मोले राम नाम हृदय में तोल। लाद के संग के संग चाले अवर त्याग पिता जंजाल। धन धन कहे सब कोए मुखु जल हर करगे सोए। इहवा पार विरला वा पारे नानक ता कै सद बल हारे। चरण साध से धोए धोए कियो अर्प साध को अपना जियो। साध के दूर करो स्नान साधु ऊपर जाइए कुर्बान। साधु सेवा वंड भागी पाइए साध संहर कीर्तन गाइए। हम सुबिघन से साधु राखे हर गुण गाय अमृत रस चाखे। उठ गही संते दर आया सर्व सुख नानक से पाया। निरकत को जीवालन हार भूखे को देवत आधार। सर्व निधान जाति देखे माहे पूर्व लिखे का लेना पाए। सब कित तिसका उतरने जोगे तिल दूसर हुआ न होगे। जब जन सदा सदा दिन रहनी सबके ऊंच निर्मल एकरणी। कर कृपा जिसको नाम दिया नानक सो जन निर्मल किया। जाके मन गुर की परतीत जन आवे हर सब तीत। भगत भगत सुनिए ते हो लोए जाके हृदय एको होए। सच करणी सच साखी रहत सच हृदय सतमुख कैत। साची दृष्ट साचाया सारे सचवर ते साचा पासार। पार ब्रह्म जिन सच कर जाता मानस सो जन सच समाता। रूप न रेख न रंग त्रिखे त्रिह गुण से प्रभु भिन्न। तिसे बुझाए नानका जिस हो सो प्रसन्न। अविनाशी प्रभु मन में राख मानस की तू प्रीत त्याग। तिसे परे नाई किस कोए सर्व निरंतर एको सोए। आपे दीना आपे दाना गहरे गंभीर जहीर सुजाना। पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद कृपा निधान दयाल बखंद। साध तेरी की चरणी पाओ नानक से मन से हो अनुराव। मन सा पूरन करना जो जो कर पाया सोई हो। हरन भरन जाता नेतर कोर किसका मंत्र न जाने होर। आनंद रूप मंगल सद जाके सर्व थोक सुनिए घर जाके। राज में राज जोग में जोगी सब में सपी कर व्रत में भोगी। ध्याए ध्याए भगते सुख पाया नानक तिस पुरस्कार तिने अंत न पाया।
जाकी लीला कीमत लाए, सगल देव हारे अवगाए। पिता का जन्म के जाने पूत, सगल परोई अपने सूत। सुमत ज्ञान ध्यान जन दे, जन दास नाम भयावे से। ते गुण में जाको भरवाए, जन्म मरे फिर आवे जाए। ऊंच नीच तिथि स्थान, जैसा जनवे तैसा नानक जान। नाना रूप नाना जाते रंगे, नाना भेसरे तिरंगे। नाना बिखिनो बिखारे, प्रभु अविनाशी संकार। नाना चल करे छन माहे, पूरे पूर्ण सुखाए। नाना विद कर बंस बनाई, अपनी कीमत आपे पाई। सबगर किसे सब किसे खाओ, जब जब जीवे नाम करनाओ। नाम के धारे सगले जंत, नाम के धारे छंद ब्रह्मंड। नाम के धारे सिमरत वेद पुराण, नाम के धारे सुन ज्ञान ध्यान। नाम के धारे आकाश पताले, नाम के धारे सगले आकार। नाम के धारे पुण्या सब भवन, नाम के संग उदरे सुन सुन। कर कृपा जिस अपने नाम लाए, नाम चौथे पद में सूजन गत पाए। रूप सत जाता सत अस्थान, पुरुष सत केवल प्रधान। कर तूत सत सत जाति बाणी, सतपुरुष समाणी। सत कर्म जाति रचना सत, मूल सत सत उत्पत्त। सत करणी निर्मल निर्मली, जिसे बुझाए तिसे सब भली। सत नाम प्रभ का सुखदाई, विश्वास सत नानक गुरु ते पाई। सत बचन साधु उपदेश, सत्य जन जा तैरवे प्रवेश। सत नृत बुझे जय कोए, नाम जपत सांखी गत होए। आप सत्य किया सब सत्य, आपे जाने अपनी मित गते। जिसके शिष्य सो करने हार, और न बूझ करत विचार। करते की मित न जाने किया, नानक ज्योतिष भावे सोवर किया। बिस्मल बिसंभय बिस्माद, जिन बुनिया तिस आया स्वाद। प्रभु के रंग राज जन रहे, गुरु से।

जन का सेवक छोड़ भागी, जन के संग एक लिव लागी। जन गोविंद कीर्तन जन गावे, गुर प्रसाद नानक फल पावे।

वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सम्मान योग साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुबाए मान गुरु सवारी सतसंगी जनों अमृत बचना दा कीर्तन आप जी ने सरवण कीता है। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी की कृपा दा सदका पिछले कुछ दिनों तो राय बलवंत और भाई सत्ता जी उन्हां दी रचना तो गुरु नानक साहिब जी तो लेके धन गुरु अर्जुन देव सच्चे पातशाह पंच पातशाहियां दी शिव तो सलाह विच जो वार उचारण कीती गई उस वार दी विचार आपां कर रहे हां। इस वार दी दूसरी पौड़ी दे कुछ बचन गुरु कृपा नाल परसों दे रात्रि दीवान विच फ्री माउंट विचारे गए। अज जो दो पौड़ी दे पवित्र बचन आपने सरवण कीते ने इस दा संखेप भाव इस प्रकार है कि धन गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी गुरु नानक साहिब जी दी खत्ती दे मालक बने ने। हजूर ने अपनी गद्दी ते भाई लहने तो अपना अंग बना के अंगद नाम दे के उन्हां नू रूहानियत दा खजाना सौंप दिता ते नाल इक बख्शिश कीती कि इस खजाने नू जितना मर्जी वंडियो ते शब्द एही वरते ने के दबतिया दा अखरी अर्थ है दबा दब जितना मर्जी तुसी वंडी जायो इस खजाने दे विच कदी वी कमी नहीं आउंदी। पिछले दिन फिर अर्थ कीती सी प्यारो बाबे नानक सतगुरु जी दी इन्नी कु कृपा है कि जो खजाना गुरु नानक साहिब सिख जगत दी जां मानवता दी झोली विच पा के गए ने जितना मर्जी संसार इनू वरतदा रहे खर्चदा रहे खांदा रहे प्यारो एदे वरतन नाल खर्चन नाल खान नाल कदी भी टोटा नहीं होंदा। दूसरी गल कि यह भोजन यह खजाना जो वरतदा खर्चदा है यह भी गुरु साहिब देखदे भी इस बंदे दी जात की है इस बंदे दा मजहब की है इस बंदे दा संबंध किस धरती नाल है। प्यारो अन्न कदी भी विचकरा नहीं करदा सिर्फ इस गर्दन तो थले अन्न जान दी जरूरत है भुख अन्न सुबैकन हर एक दी मिटा दिंदा है। जदों भी कोई गुरु के शब्द नूं भावना नाल पढ़ेगा ओदा अंदर टिक जाए ते गुरु नानक साहिब दे शब्द हर एक दे अंदर नूं संतुष्टि दे। कोई भोजन छक लै ते की कदी भोजन ने यह कहा कि कणक पंजाब दी धरती ते होवे रोटी इत्थे आके कोई पकाए ते खान वाला कोई गोरा कोई काला आ जाए ते की कदी उस अन्न ने कहा कि इस बंदे दी थाली विच मैनू परोस के ना रखियो क्योंकि मैं पंजाब दी धरती ते पैदा हुई ते ए खाएगा मैं एदी भुख नहीं मिटानी। नहीं, बाबे नानक दा आगमन उस धरती ते है पर भाई साहब कहने जिथे भी गुरु नानक साहब गए ने ते बाबे नानक दे शब्द ने हर एक नू ठंड दिती है भावे ओ अरब सी भावे सुमेर पर्वत दी भावे ओ किते गुफावां पहाड़ां दीआं कंदरां सन हर एक दा भोजन गुरु नानक साहब ने ओदी तृप्ति कराई।
अज जो विचार चलनी है इत्थे है कि गुरु अंगद साहब अपना तख्त लगा के बैठ गए, दरबार सजिया है, अर्श और कुर्स ये दो शब्द इस्लामी मत नाल संबंधित ने। एक दा अर्थ है कि अठवां आकाश ते दूजे दा अर्थ है नौवां आकाश, ते नौवां आकाश ओनू कहा जांदा है जिथे खुदा दा तख्त है। इत्थे बाबा जी सत्ता जी बाबा बलवंत साहब राय बलवंत जी कहंदे ने प्यारियो कि जिस थां ते तुसीं कहंदे हो रब दा तख्त है उस तख्त तो गुरु अंगद साहब जी दे शीश उत्ते नाम दी झड़ी लगी हुई है, उत्थों नूर चटिया जा रहा है। ते चटना शब्द तुसी समझ दे कि दोनों हथा नाल सिंजना, कहिंदे उत्थों नूर चटदे पए ने। ते जदों कोई गुरु अंगद साहब दे दर्शन करदा है ना, ते गुरु अंगद साहब दे दर्शन कीत्या ही जन्म मरण कटिया जांदा। फिर नाल बचन होर के कहन लगे देखो एक पासे गुरु के बिंदी पुत्र सन, दूजे पासे गुरु का नादी पुत्र है। बिंदी का आखरी अर्थ है जिसने खून तो बिंद तो जन्म लिया है, ते नादी का अर्थ है जिहड़ा नाद विचो शब्द विचो पैदा होया है, जिन्हें शब्द नू कमाया है। बाबा लहना जी नादी पुत्र ने, ते कहिंदे ने ओ जो गुरु नानक साहब कह रहे ने ओनू सत बचन करके कमाया, कोई तर्क कोई किताब कोई हुज्जत नहीं। पर पुत्रां दे मन च एक भरम रहा कि बाबा नानक साडा बापू है, आखिर बापू दी विरासत दा बापू दी गद्दी दे मालिक ते पुत्रां ने बनना है। पर ए पता नहीं सी ए दुनियावी गद्दी नहीं कि जेड़ी बाप तो बाद पुत्रां नू मिले ए तां तुर दरगाह बख्शियां होया नू दात मिलेगी। प्यारियो गुरु अंगद साहब ने जो गुरु नानक साहब कहा ओनू कमाया है, पुत्र आकी हो गए, पर ओ दात ना लै सके जो बाबा लहना साहब नू मिल गई। इस दी विचार आप अज करनी है। आप बख्शो इकाग्रता, तन गुरु अंगद साहब दे चरणा दी टेक लईए, उस गुरु ते अज भी उस दी रहमत वरदी है। आप बख्शो आशीष और उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु जी, करो कृपालता फिर उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु जी। सतगुरु गुरु अंगद साहब जी दे पवित्र दरबार दे अंदर सिमत केवल एक परमात्मा भी हुंदी है, दूसरे की कोई गल नहीं। ते गुरु अंगद साहब जदों बैठदे ने ते हजूर दे चेहरे तो पवित्र स्वरूप तो जो नूर निकलिया है वो असल विच परमात्मा दे रब दे घर विचों गुरु अंगद साहब जी दे शीश उत्ते चटिया जा रहा है। ते खडूर साहब दी ये घटना हर एक नूं पता होनी है, ये मनोत है, ये रवायत भी है उथे कि धन गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जदों अमृत वेले अपना किवार खोलदे सन ते उस वेले दुखी लोड़वंद लोग भीड़ां बना के कतारां बना के खलोते सन, ते जिथे जिथे गुरु अंगद साहब जी दी जिन्हां उत्ते नजर पै गई ते जिन्हां ने भावना नाल गुरु अंगद साहब दे दर्शन कीते उन्हां सारियां दे दुख कटे जांदे सन। ये केवल साखी है, पर जदों असीं गुरु ग्रंथ साहब दी बाणी पढ़ने हैं ना, ते बाणी विचों जदों सानूं गुरु अंगद साहब संबंधी शब्द बोल के कहिंदा भी गुरु अंगद साहब कोल आ रहमत सी ते होर भरोसा साडा जिहड़ा ओह दिल हुंदा है, पता नहीं गुरु अंगद साहब दी सिफत करदिआं बहुतात जिहड़े शब्द वरते ने ओह अमृत दृष्टि दे वरते कि गुरु अंगद साहब जी दे अंदरों निकलदी होई जिहड़ी रहमत है ओह हर बंदे दे अंदर नूं टिकांदी पई है। हजूर दा सिफत दा बचन करदिआं पटकल सहार जी ने शब्द कहा, कह लगे जाकी दृष्ट अमृत तार तालुक खन उतार। कहने धन गुरु अंगद साहब सच्चे पातशाह जी की जेड़ी दृष्टि है ना ओ अमृत झरदा पिया है, ते नाल बचना कालुक
ਖੰਨ ਉਤਾਰ, ਖੰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਖੁਰਚ ਕੇ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਉਹਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਕ ਬਣ ਕੇ ਜੰਮੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਖੁਰਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਜਾਂ ਕਿ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰ, ਕਾਲਕ ਖੰਨ ਉਤਾਰ, ਤਿਮਰ ਅਗਿਆਨ ਜਾਹੇ ਦਰਸ਼ ਦੁਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਟੇਕੇ ਵਾਚੀਏ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਨ ਇਹ ਵੀ ਭਰਮ ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਲਓ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਪਿਆਰਿਆ, ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਵੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਕਿ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰ, ਕਾਲਕ ਖੰਨ ਉਤਾਰ ਤੇ ਤਿਮਰ ਅਗਿਆਨ ਜਾਹੇ ਦਰਸ਼ ਦੁਆਰ, ਇਹ ਭਗਤ ਕਲ ਸਹਾਰ ਜੀ ਦਾ ਸਵਈਆ ਹੈ। ਤਿਮਰ ਅਗਿਆਨ ਜਾਹੇ ਦਰਸ਼ ਦੁਆਰ, ਦੁਆਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦਰਵਾਜਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਉਹਦੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਵੀ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਾਂ ਕਿ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰ, ਕਾਲੂ ਖੰਨ ਉਤਾਰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਿਮਰ ਅਗਿਆਨ ਜਾਹੇ ਦਰਸ਼ ਦੁਆਰ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ ਉਹ ਜੋ ਸੇਵੈ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੇਵਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਕਿਨੇ ਗਾਖਰੀ ਬਿਖਮਕਾਰ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਗਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਰੋਗ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਪਿਰਤ ਕੇ ਫਿਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਚਿਤ ਹੋ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਉਹਨੇ ਬਚਨ ਕਮਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਦਾਤੇ ਦੀ ਦਾਤ ਜਾਂਦਿਆਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਰਗੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮਲੂਕਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਦੌਰਾ ਪੈਣਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਟ ਕਰਕੇ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਰੋਗ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਰਗੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਂਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਵਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦੌਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਤੂੰ ਇੱਕ ਬਚਨ ਸਾਡਾ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਤੇਰਾ ਮਿਰਗੀ ਦਾ ਰੋਗ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਬਚਨ ਕਮਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬਚਨ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਤਾਂ ਕਮਾ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਰੋਗਤਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਸਰੀਰ ਅਰੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰਤ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਨਦਰੇ ਕਰਮ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਦਰ ਉਪੱਠੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਮਿਰਗੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਮੰਨ ਲੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ, ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਬਚਨ ਮੰਨ ਲੈ, ਤੂੰ ਨਸ਼ਾ ਪੀਣਾ ਛੱਡ। ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਨਸ਼ਾ ਪੀਣਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੇ ਮਿਰਗੀ ਦਾ ਤੇਰਾ ਰੋਗ ਆਪਣੇ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਬਚਨ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਾ ਕਰੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪੀਵੀ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਰੋਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਇਹ ਬਚਨ ਤੇਰੇ ਲਈ ਮਾਨੋ ਰਾਮਕਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਲਕੀਰ ਟੱਪ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇ। ਪਿਆਰੇ, ਉਸ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ, ਦਾਰੂ ਪੀਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਰੋਗਤਾ ਮਿਲ ਗਈ, ਮਿਰਗੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਹੱਟ ਗਿਆ, ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਨਿਕਲੇ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਰੋਗ ਸੀ, ਸਾਲ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਅੱਜ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ, ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਬੱਦਲ ਬਣਿਆ, ਥੋੜੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਰੁਮਕੀ, ਇਹਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਚੁਬਾਰਾ ਸੀ ਮਲੂਕੀ ਦਾ। ਇਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਥੋੜੀ ਜੀ ਹਵਾ ਠੰਡੀ, ਪਤਾ ਨੀ ਕਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ, ਪਰਤ ਕੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਪਾਪ ਉਂਗਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਬਾਬਾ

अगर नंग जोगे सारे तवे काट के मुड़ी सूर में मदानो पल खट के पावे कुछ होवे हार के नहीं होना सूर में

बाबा बोलिए पत होए उत्तम से दर उत्तम कहिए नीच कर्म भैरो उत्तम से दर उत्तम कहिए नीच।

बिस्तरे मंगे दम्मा दम्मा माया मनो न बिस्तरे मंगे दम्मा दम्मा सो प्रभ चित नई नानक नहीं करम इच्चर मूल ना थोड़ी दो पिक्चर मूल न थोड़ी दो जिक्र आप कृपा शब्द अखुट बाबा नानका खाए।

0: केळबोधी रंगीली धरती दे वसनीक स्रोतियो, तुसी ये प्रोग्राम FM रेडियो CISK 94.3 तो सुन रहे हो। ये प्रोग्राम गुरुद्वारा साहिब वैष्णव सिंह सवा विलियम्स लेक तो प्रसारित किया जा रहा है। उम्मीद रखते हाँ कि इस प्रोग्राम नु होर भी खोज भरपूर बनाउण लई तुसी सानू सुझाव दिंदे रहोगे।
1: साडे स्टूडियो दे टेलीफोन नंबर तो आप जी नु पता ही है, जे नहीं तो वह भी लिख लो जी। एरिया कोड 250-392-3074 अते फैक्स नंबर एरिया कोड 250-392-3075।
2: साडा ईमेल एड्रेस नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com। एक बार फिर नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com।
3: You are listening Sikh Radio broadcasting from Gurdwara Sahib Western Singh Sabha Williams Lake. Any comments and suggestions please call 250-392-3874.

व्यापक अनंत जपते पियो पियो रल मिल के स्वागत अनुदान करिए। इतने तन करके हाजिर लगा रहे हैं अपना और मन करके स्वागत अनुदान करते हैं। गुरु चरण जपते हाजिर लगाइए, कोई भी सामान्य न रखिए।

0: सुरक्षित सेवा प्रदान करने कीर्तन करने वाला जब प्रकार में को नक्षिमा मछली सर्व पद से कृपा करण सर्व दादा समय दर से प्रवान करण बक्षो श्री करो स्न पुत्र खुशी वाह खुशी
1: का वाह खुशी की
2: वाहे जी के प्रति।

मथुरा जन को प्रभु दीन दयाल है संगत से सन्हाल करे, संगत से सन्हाल करे। रामदास गुरु जगतार